तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरु

0: महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत ब्राह्मण्ड के रचयिता सृष्टि के पालन करता घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत। धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि हम यहां इस आश्रम के अंदर सत्संग में आए। ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कार्य अच्छा कर्म यहां लेके आया है। ब्लेसेड सेल्फ ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, द ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम होली भारत, ब्यूटीफुल कलरफुल राजस्थान, पिंक सिटी, जयपुर के जोधपुर, जयपुर। वेलकम। टुडे सब्जेक्ट इज द नाद योग। वेदा से नाद रूप पर ब्रह्मा, वेदों में कहा गया है कि नाद रूप पर ब्रह्म, अगर परब्रह्म परमात्मा को देखना है कि वो कैसे हैं, तो उनका और कोई स्वरूप नहीं है, केवल नाद। द वाइब्रेशन द रेजोनेंस अनंत ब्राह्मण्ड सहस्त्र सूर्यस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सन सिस्टम्स एंडलेस स्टार्स एंड मून्स ऑल इज क्रिएटेड आउट ऑफ द वन द साउंड। शून्य आकाश पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसके अंदर हजारों लाखों लाखों सूर्य मंडल हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले अपने ज्ञान शास्त्रों के अंदर लिखा है बताया है। यहां तक कि एक योगी की चेतना 14 लोक 2100 ब्राह्मण्ड ये जो 7 लोक बताए गए हैं इनके परे 2100 सूर्य मंडल है, वहां तक योगी की चेतना पहुंच सकती है। उसके आगे जाने के बाद में वो स्वयं जो है वो फिर वापस नहीं आएगा। 14 लोक 2100 ब्राह्मण्ड, द 14 डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड 2100 सन सिस्टम्स अबव दैट द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगी कैन एक्सपांड एंड टिल दैट द अवेयरनेस ऑफ इन दैट कॉन्शियसनेस कैन रीच एंड कम बैक एंड गिव द नॉलेज टू अस। Modern science try to come to the moon, try to go to the Jupiter or the Mars, which is within our sun system. But how the yogis went there, that is the evidence of the Hindustan's Bharat ki Sanskriti aur Bharatiya Yogi Muni Rishi Muniyo ki Shakti aur Gyan. और वो जो कहा गया है कि एविडेंस विल नेवर डाई, कोशिश करते हैं लोग, हमारा धन चुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उनके पेट में पचता नहीं है. ऑल दिस दैट टाइम कॉल्ड शून्याकाश, ए वॉइड, डार्क ब्लू स्पेस, नथिंग इज इनसाइड, नथिंग. देयर अगेन शास्त्रा सेड, वेदा सेड, एको हम बहुश्यामी, आई एम वन एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई माई सेल्फ. क्या भगवान की इच्छा होती है? क्या भगवान इच्छा करता है कि मैं एक हूं, अनेक में बनूंगा? वो कौन है कहने वाला? देखा किसी ने? सुना किसी ने? लेकिन ऋषि मुनियों का कहना है, वो जो है जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने कहा या जिसने कहा कि मैं एक अनेक में बनूंगा, वो एक जो है वो एकाकार, निराकार, निरंजन, नित्य, चिदानंद रूप स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, अनंत की चेतना, हरि अनंत, अनंत हरि कथा. That time, in endless there awakes Purna, a vibration, a resonance, that's called the sound. And that sound we call Om, Akar, Ukar, Makar. Through that resonance, whatever is visible in this universe, whatever is invisible but you can feel, in that all is created by that one bindu, one akar, nad bindu kala, nad bindu, us bindu se shuruat hoti hai, vah bindu abhi tak hai. Jis samay aap maa ke garbh mein प्रवेश करते हो, उसमें सबसे पहला एक बिंदु केंद्र बनता है, वो हमारी नाभि है, और उसी के पास में आंत बनने लगती है, फिर रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर दूसरे अवयव और अंग शरीर के जो है बनते हैं. लेकिन बिंदु तो वो है नाभ, और वो जो है मां का गर्भ जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है. मां की कोख जो है वो संपूर्ण आकाश तत्व है, और वो जीवात्मा जो है वो चैतन्य, उस परमात्मा का स्वरूप चैतन्य. तो जब कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, वो कमल ये है कि विष्णु जल के अंदर रहता है, और वो जल के अंदर वही चेतना जो कि मां की शक्ति है वो रक्षा करना. भगवान विष्णु हमारा करते हैं, क्या करते हैं? रक्षा. ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड विष्णु इज द प्रोटेक्टर एंड शिवा इज द लिबरेटर, नॉट अ डिस्ट्रैक्टर, बट ही डिस्ट्रॉयज द नेगेटिव. शिवा इज नॉट अ डिस्ट्रैक्टर. तो वह जो मां के शरीर के अंदर जो गर्भ बढ़ता है वही कमल है, और वही कमल जो है जब जन्म होता है बच्चे का, अभी भी उसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, उस अनंत मां अंदर अनंत है. उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले भगवान मां है, मातृ देवो भवा, वही कमल है, वही कमल बढ़ता है, और वही उसकी कई अलग से हमारे योग के अंदर वही ईडा पिंगला सुषुम्ना है, वही नाड़ी है, वही कमल खुलता है, ब्रह्मा वही ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा. वो उसी नाद का स्वरूप जो है वो नाद, वो रेजोनेंस, दैट साउंड इज स्टिल रेजोनेटिंग कॉन्स्टेंटली बियॉन्ड मैनी सन सिस्टम्स एंड इन आवर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. देयर
1: सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपरां. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. Salutations to the Cosmic Self.
2: Tiszteletem a kozmikus önvalónak.
1: Salutations to Srila Purji Siddhapeet Parampara.
2: Tiszteletem az Alak Purji Paramparának.
1: My dear Pranam Swabhavat Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalishwar Maheshwaranand Purji.
2: Pranam Gurudevának, őszentsége, Gurudeva Maheshwaranandának.
1: Om Namo Narayan to the sannyasis.
2: Om Namo Narayan to a sannyasiknak.
1: Hari Om and good morning to all of you who are present in this hall and those who are watching through Swamiji TV.
2: Hari Om, jó reggelt mindannyiótoknak, akik itt vagytok ebben a teremben, és akik a Swamiji TV-n nézik.
1: How are you all?
2: Hogy vagytok?
1: Good. Very good. Hmm? Heaven, very good.
2: Mennyországban, azt mondta.
1: What is today?
2: Mi van ma?
1: And what is for Dev Puruji? Mahasamadhi Day.
2: Péntek, Dev Puruji Mahasamadhiának napja.
1: So it's a day when we remember our parampara.
2: Ez az a nap, amikor megemlékezünk a paramparánkról.
1: A day when we remember how grateful we are to be connected to this great parampara.
2: Az a nap, amikor megemlékezünk arról, hogy milyen hálásak vagyunk, hogy ehhez a nagy paramparához kapcsolódhatunk.
1: A day not only to listen and to talk about Dev Puruji, but to implement his way of living into our lives.
2: Nem csak hallgatunk Dev Purujiról, hanem megvalósítjuk az ő életelveit.
1: For us to remember how the things work.
2: Hogy emlékezzünk arra, hogy hogyan mennek a dolgok.
1: How it's all pre-decided.
2: Hogyan van mindez előre eldöntve.
1: And how we are just the mere puppets of this show.
2: És hogy mi csak bábok vagyunk ebben a játékban.
1: We think we know everything.
2: Azt gondoljuk, mindent tudunk.
1: We think that we are the ones planning everything.
2: Azt gondoljuk, hogy mi előre eltervezünk mindent.
1: But in reality it's not us.
2: De a valóságban nem mi vagyunk azok.
1: It's all pre-decided.
2: Minden előre el van döntve.
1: What did Dev Puruji tell?
2: Mit mondott Dev Puruji?
1: When the British officers said,
2: ott, mit mondott az angol tisztnek?
1: Anyone remembers?
2: Emlékszik valaki?
1: At the Naki Jhil, at the Naki Lake in Mount Abu.
2: Mount Abu-nál, a Naki tavon.
1: At that time it was pre-independence.
2: Ez még a függetlenség előtt volt.
1: Tomorrow is also Indian Independence Day.
2: Ma egyébként a függetlenség napja is van Indiának.
1: 15th August 1947 we got independent.
2: 1947. augusztus 15-én nyerte el a függetlenségét India.
1: So before independence, when there was this British Raj.
2: Mielőtt független lett, brit terület volt.
1: At that time, all the sadhus, all the pujaris, all the spiritual people were put in. They were put in jail.
2: És abban az időben a szádukat, a pujárikat börtönbe zárták, mind.
1: The main thing for them was divide and rule.
2: Ők úgy uralkodtak, hogy oszd meg és uralkodj, ez volt a fő elvük.
1: And our philosophy is unite and live.
2: Most pedig a filozófia az, hogy éljünk egységben.
1: Slight difference in thinking, right?
2: Van egy kis különbség a gondolkodásban, ugye?
1: One thinking is we divide the people that they fight amongst each other.
2: Az egyik filozófia az, hogy megosztjuk az embereket, hogy aztán harcoljanak egymással.
1: But Satya Sanatan Dharma teaches us Vasudeva Kutumbakam.
2: De ezt tanítja nekünk a Satya Sanatan Dharma, hogy Vasudeva Kutumbakam.
1: And Holy Guruji says all in one, one and all.
2: Holy Guruji pedig azt mondotta, egy mindenben, minden egyben.
1: So for us, even the ones who we do not know,
2: számunkra azok is, akiket nem ismerünk,
1: even the ones who we never met,
2: akikkel soha nem találkoztunk,
1: living or non-living,
2: élő vagy nem élő,
1: human or animal,
2: ember állat,
1: we see all of them with the same compassion, with the same love that we hold for ourselves.
2: Ugyanazzal a szeretettel, könyörületességgel tekintünk rájuk, mint saját magunkra.
1: Because that jiva, that Lord, they are in everything.
2: Mert az a jiva, az az Úr mindegyikben benne van.
1: When Hiranyakashyap and Narasimha Bhagavan, you remember that story? When everywhere, is he in here? Yes, he was in the pillar. Is he in the stable? He broke it. Yes, he is there. Wherever he searched for, in every single thing, they reside.
2: Emlékeztek a Hiranyakashyap féle történetre, hogy mindenben benne volt, az oszlopokban, meg mindenben, ahova csak nézett.
1: And if the divine is in everything and everyone,
2: az isteni az mindenben és mindenkiben benne van.
1: It's also within us.
2: És akkor bennünk is.
1: In the Rama Darbar, they were asking Hanumanji, you are saying always Rama is this, Rama is that, Rama is here, Rama is there. Where is Rama? Is he inside of you?
2: És a Ramayanában megkérdezték Hanumanjit, hogy te mindig arról beszélsz, hogy Rama itt van meg, ott van meg, mindenhol van, benned is ott van.
1: Then what did Hanumanji do?
2: Akkor mit tett Hanumanji?
1: He opened up his heart and showed that Sita and Ram is sitting inside of his heart.
2: Felnyitotta a szívét és megmutatta, hogy ott benne ül a szívében Ráma és Sita.
1: So when we realize and when we understand that that divine is inside of our hearts and inside of each and every one of us, we will start treating everyone the same way as we treat ourselves.
2: És mikor rájövünk arra, rádöbbenünk arra, hogy az isteni az bennünk is benne van, de ugyanúgy benne van mindenki másban, akkor onnantól kezdve mindenki mást ugyanúgy kezdünk kezelni, mint saját magunkat.
1: But to see that divine in others, to see that purity in others, we need to become pure.
2: De ahhoz, hogy meglássuk másokban az istenit, a tisztaságot, ahhoz nekünk magunknak is tisztává kell válni.
1: We already have that divinity inside of us because of the day when we got mantra diksha, Gurudev lit that spark, that divine jyoti inside of our hearts.
2: Bennünk megvan az a tisztaság, mert a mantra diksha napján belénk tette Guruji, meggyújtotta azt a fényt bennünk.
1: Deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarvasatyam. The truth which lies in that divine light.
2: Az az igazság, amely abban az isteni fényben rejlik.
1: That purity which resides in that divine light.
2: Amely benne van, az a tisztaság ebben a fényben.
1: And that light which removes that darkness and brings back that light.
2: Ez az a fény, amely eltávolítja a sötétséget.
1: Around us, even if there is darkness, but within, if that divine light is glowing very strong, then we are the ones who are radiating everything around us.
2: Hogyha körülöttünk mindenütt sötétség is van, akkor is, hogyha elég erősen világít bennünk az a fény, akkor az megvilágítja a körülöttünk lévő sötétséget.
1: Sometimes when we see some people, we look at each other, we can realize that, oh, this, how, what energies that person holds.
2: És néha tapasztaljuk azt, hogy bizonyos emberekben micsoda energia van.
1: And that we notice because we can see that within ourselves.
2: És ezt azért tudjuk egyáltalán észrevenni, mert magunkban is látjuk ezt.
1: And when we realize that we are connected with that same divine light from Sri Dev Puruji Maharaj.
2: És mikor arra is rájövünk, hogy ezáltal az isteni fény által a Dev Puruji Maharajhoz is kapcsolatban vagyunk.
1: That same eternal light is traveling through the parampara towards all of us.
2: Ez az isteni fény halad végig a paramparán, mi felénk, hozzánk.
1: Then we know how powerful we are.
2: Akkor rájövünk, hogy milyen erő is van nekünk.
1: And we are talking about how everything is meant to be as it is.
2: És beszéltünk arra, hogy mennyire minden úgy van, ahogy lennie kell.
1: In Mount Abu, when they were imprisoned,
2: a Mount Abun,

ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्तं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मौक्तमूलम् ॐ शान्ति परब्रह्म।

चार भजन या एक भजन आप वसुदेव को बनाई सत्संग पधर और सब गन आपा दो दो चार चार महापुरुषों की वाणी सुना।

0: giving blessings, and now he is also enjoying satsang, listening from his room. So it's a holy place. It's amazing that this is such a small village and nobody in India is so much know about this place as we know in Europe and around the world. So this place, Kailash and Sridevapuriji, is more popular and more known in Europe than in India itself. It's like a divine game or Leela by our Parampara. So I welcome you all, even virtually, on this darshan of the Kailash, which you can see. We have night bhajans, we have our beloved people from Europe and around, and we have of course many local from Sikar and from Badikatu area. We have many great singers. Now this youngest edition of Pali, he will also sing very nice bhajans. So I'm very blessed to be able to be present in this holy place on this holy day, on this special occasion when Devapuriji took his divine form and left this world to help us in other way. Siddhik Narayan Bhagwan Ki Jai, Devadidev Devishwar Mahadeva Ki Jai, Hinudanam Samrat Samadhananji Bhagwan Ki Jai, Vishwa Guru Mahalashi Samrachanji Gurudeva Ki Jai.
1: Arról beszélt, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy Swamiji több mint egy év után ellátogatott Kailashba. Kailash egy igen kis falu.
2: Hariom Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Mannatha Shri Jagannatha, Madguru Shri Jagadguru, Mamatma Sarva Bhutatma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Sarvapratham, Padam Parampita Parameshwar ke Pavan Charno mein mera naman. Hamare Shri Alapurji Siddhapeeth Parampara ke Guruo ko mera naman. हमारे प्रिय गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वर अनंतपुर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा साष्टांग नमन प्रणाम. कैलाश में विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुर जी महाराज, हियर इन वेप ऑल सन्यासीज, ओम नमो नारायण टू ऑल ऑफ यू. और वहाँ कैलाश ग्राम में हमारे पावन पवित्र आश्रम में पूज्य गुरुदेव के जितने भी भक्तगण आए हुए हैं, आप सबको भी मेरा हरिओम. विक्रम, एक बार उनसे पूछना, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को, सबको वहाँ? मेरा, आप सब देख रहे हो मेरे को वहाँ? तो आप सब, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब श्री देवपुर जी महाराज के महासमाधि दिवस पर कैलाश ग्राम में एकत्रित होकर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सब अपने देवपुर जी महाराज की महासमाधि दिवस को मना रहे हैं. आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव का भी स्वास्थ्य इतना अनुकूल न होने के बावजूद भी गुरुदेव भगवान वहाँ कैलाश आश्रम में विराजमान हैं, आप सबको आशीर्वचन दे रहे हैं, आप सब से दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है आप सबको. और महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुर जी महाराज भी वहाँ विराजमान हैं और आप सबको अपनी अमृतवय वाणी के साथ भजन सत्संग सब आयोजन चल रहा है. और वहाँ मंच पे विराजमान पप्पू जी गर्ग, बजरंगपुरी जी और अन्य जितने भी भजन गायक वहाँ उपस्थित हैं, आप सबको भी गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे. आप सब बहुत आगे ऐसे ही अपने भजन संध्या का और सत्संग का लाभ उठाए। आप सब ग्रामवासी, जितने भी ग्रामवासी वहाँ पधारे हैं, जितने भी ग्रामवासी गुरुदेव के सानिध्य में अपने उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए पधारे हैं, उन सब का भी आश्रम में स्वागत है। भगवान श्री देवपुरी जी महाराज का जो अस्तित्व है, जो श्री देवपुरी जी महाराज का जो आशीर्वाद है, वह निरंतर पीढ़ी दर आज भी उस आश्रम में महसूस हो सकता है। और हम सब कैलाश आश्रम में बैठे बैठे भी गुरुदेव का, श्री देवपुरी जी महाराज का जो उनका अस्तित्व है, जो उनकी ऊर्जाएं है, उन सब ऊर्जाओं का सेवन हम वहाँ बैठे बैठे कर पा रहे हैं, हमारे लिए कितना सौभाग्यशाली है। हम भी चाहते हैं कि हम सब भी वहाँ आपके साथ में, वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में रहें, पर यहाँ पे भी कार्यक्रम चल रहा है, तो हम यहाँ पे 300-400 लोग यहीं बैठ के आपको सबको कैलाश आश्रम के वहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और ये इस कलयुग की, इस आधुनिक युग की एक अच्छी चीज़ है कि विश्व के किसी भी कोने पे हम बैठे हैं तो भी हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और इस माध्यम से हम सब सत्संग लाभ ले सकते हैं। और हम सब यहाँ बैठकर जो देवपुर जी महाराज की जो गुफा है, उस गुफा में विराजकर, उस गुफा में बैठकर अपनी साधनाओं में लग्न हो सके, यही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब उस गुफा में जाए, दर्शन करें और देवपुरी जी की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर समाहित कर सके, यही मैं शुभकामनाएं करता हूँ। और आप सब इस देवपुरी जी की महासमाधि दिवस पर कैलाश आश्रम में बहुत सौंदर्य पूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन करें और गुरुदेव का सदा ही आप सब के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। गुरुदेव सदा ही आप सब के ऊपर शक्ति, भक्ति, वैराग्य प्रदान करें और गुरुदेव का जो शारीरिक शरीर है वहाँ आप सबके साथ विराजमान है, यह भी बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि गुरुदेव का स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी आप सबके बीच में आप सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गुरुदेव का जो प्रेम है वह अटूट प्रेम है, गुरुदेव का प्रेम निरंतर आप सबके ऊपर बरसता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए गुरुदेव का प्रेम हमेशा आप सबके ऊपर ऐसे ही निरंतर इसी रूप से बरसता रहे। और भगवान श्री देवपुर जी महाराज, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी महाराज, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंदपुर जी महाराज और हमारे सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद परमहंस परिवराज का आचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज का भी आप सबके ऊपर ऐसे ही उनका प्रेम आशीर्वाद बरसता रहे। और इस देवपुर जी की महासमाधि दिवस पर जो भी देवपुर जी महाराज ने हमको सिखाया है, जो भी देवपुर जी महाराज के बारे में हमने किताबों में पढ़ा है, जो भी हमारे गुरुदेव भगवान ने उनके बारे में हमें बतलाया है, उन सब चीज़ों को हमारे दैनिक जीवन में अपनाकर श्री देवपुर जी महाराज के जो प्रक्रियाएं थी, जो उनके रहने का, उनके आशीर्वाद देने का तरीका था, वह सब अपने जीवन में अपनाइए। केवल उपदेश नहीं है जो सिर्फ गुरुदेव हमें देते रहे, जो हम लीला अमृत में पढ़ते थे वह सिर्फ गुरुदेव का उपदेश नहीं है और उनकी लीलाएं नहीं है, पर हम तुच्छ मनुष्यों को उस आध्यात्मिक जीवन पर अग्रसर होने के लिए हमें बतलाई गई चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जो हमें अपने जीवन में अनुकूल करके और अपने जीवन में हर चीज़, हर द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब को हटाकर और केवल गुरु भक्ति के और साधना के और अपने आध्यात्मिक जीवन पर अग्रसर होने के लिए, हमें इस आध्यात्मिक पथ पर उजागर करने के लिए हमें गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहा है। और इसी प्रकार से हम सब की इच्छा है कि गुरुदेव का, हम सब का स्वास्थ्य उनको लगे, हम सब की उम्र उनको लगे और वह हजारों साल जिए और हजारों साल हम सबको आशीर्वाद देते रहे और हम सब का जीवन, हम सब का जो ये मनुष्य जीवन है इसे अग्रसर होने के लिए उनका आशीर्वाद सदा हमारे पर बना रहे। यह मनुष्य जीवन जो है ना, बड़ा अनमोल है। इसे हम ऐसे ही

0: गवा देते हैं। किस प्रकार से गवाते हैं? आजू बाजू चीजा देख के, काम क्रोध मद लोभ के चंगुल में फंसकर, उस मकड़ी की जाल में फंसकर हम सब वहीं लोट मोट हो जाते हैं। तो उसे सब हटाकर और हमें अपनी धारणा को ऐसी बनानी है कि हमारे विचारधारा ऐसे चले कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो अभी आप सबको अपना भार, अपना जो भी चीज़ें हैं, दुख दर्द कष्ट सब उस देवपुर जी आश्रम में छोड़कर और कोई भार अपने कंधों पे लेके नहीं जाना है। अपने सिर्फ प्रेम, हमारे बीच में एकता और गुरु भक्ति ऐसे ही अग्रसर हो, यही शुभकामनाएं देकर गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। हम आप सबके भजन का आनंद लेंगे अभी कुछ भजनों का। आप इसी प्रकार से इस आश्रम के अंदर उस ज्योति को ऐसे ही अग्रसर बढ़ाते रहे। गुरुदेव ने आप सबको आपके हृदयों में श्री देवपुर जी बाबा देवपुर जी महाराज की जो ज्योति है उस सब की आपको आपके दिलों के अंदर बसा दी है। अब उस ज्योति को हमारे अंदर सीमित नहीं रखना है, उस ज्योति को लेकर हम सब देशवासियों तक, ग्रामवासियों तक, जितने भी लोगों तक वह गुरुदेव का जो प्रेम और आशीर्वाद है, जो वह दिव्य ज्योति है, उसे हम ऐसे ही सब लोगों तक प्रकाशित कर सकें, यही शुभकामनाएं देते हुए गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम् न्यायेण मार्गेण महीन महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम बाबा देवपुर जी महाराज की जय। अलकपुर जी महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की। आप सब आगे सत्संग का आयोजन रखें, ऐसे ही सुंदर सा भजन गाए और आप सबको गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद। आप सबको मेरी आवाज आ रही है वहाँ कैलाश में अभी तक या नहीं? One of my favorite bhajans is Baba Devpurji Maharaj.
1: So egyik kedvenc bhajanom Baba Devpurji Maharaj.
0: So I asked them to sing that one for us.
1: Azt kértem, hogy énekeljék el azt.
0: The person who sings that bhajan is drinking chai, so till then they will sing another bhajan.
1: Aki azt a bhajant énekelné, az még issza a tejáját, úgyhogy most egy másikat fognak énekelni. Hallunk.
2: आप जा कहीं भी या मंच ग्रहण करें।
3: Yes. परमेश्वर शिव स्वरूप देवपुरी के महाराज विश्व पावन तप भूमि पर इतने भी महानुभव अतिथि का विराजमान है उस सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी से आगे और अनुमति लेते हुए मैं अपनी मुखार बिंदु से भजनों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो नाबालक समझ कर मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।

덕분에 그래도 많이 사회 공부도 많이 이 발리카리 구르다다 이 집안아 교차로 심해졌다 अपनी मीठी मीठी तालियों के साथ इस भजन का पालन करूंगा तो बिल्कुल नाचते हुए झूमते हुए और जिसने को जिसको भी अगर नाचने का मन है तो ये आप मौका ना झुक क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है इसका उद्देश्य मनुष्य तभी समझता है जब उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है और गुरु किया कितने कौन विराज माने पर दोनों हाथों को उठाकर गुरुदेव का जयकारा लगाए बोले शतकर उदय ये भली करी गुरु दाता जी भरा क्यों

इसे ध्यान से सुनना। ये मोमाया बिना भी भारी ने खो गयो कोई वारी सुनो, ये जो माया का है ये बहुत बड़ा है, इसका कोई पार नहीं है। और मन के इंद्रियों को नियंत्रण करना हर किसी के बस की बात नहीं है।

0: ताश की निवासी है, उसके पश्चात हमारे मेहमान आए हुए हैं।
1: Yo, thank you.

0: की जय। सत्य सनातन धर्म
1: की जय।
0: शुभ रात्रि।
1: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का की जय। गुरु नानक जी महाराज की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय।

दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधव जी महाराज की जय। परम स्वामी महाशिवरान जी गुरुदेव की जय।

हिमालयंसि देवतार श्री श्याम पुरुजी महादेव की जय। देवादि देव श्री देव पुरुष महादेव की जय।

श्रीदीप नरम भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, श्री अलक पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद सकुरुदेव की जय, विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।